0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

नमस्ते, म गायक प्रमोद खरेल। मेरो गीतमा जादु चलाए जस्तै सधैं जादु चलाउने रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगा